0: तीसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालू के और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer. Mung sare batausta da har yo school kapyani, kitabuna, guides.

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: ख्वाबों को हकीकत में बदलिए. आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के साथ. नए साल में एक नया आगाज.
3: टोपी मेडिकल केयर सेंटर कमजे चिप मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर आंद अवाम द खिदमत लपारा मौजूदगी चिपके डॉक्टर आमिर असलम कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट दैतवार परवज लस बजो ना तरमा खाम सलोर बजो कोरे लेडी डॉक्टर फरीहा मुश्ताक फिजियोथेरापिस्ट द फिर न तर जुमेरात रसकोरे सहर नहो बजो ना तर माजीगर सलोर बजो कोरे डॉक्टर विकास अहमद कंसल्टेंट एंड साइकेट्रिस्ट दैतवार परवज यवोलस बजो ना तरमासपिन ब्रे बजो कोरे गायनोकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर इकरा रफीक माहिर अमराज जच्चा बच्चा द पीर नतर हफ्ते पूरी माजीगर द सलूर बजो न तरमासोतन अतो बजो पूरे बाओपीडी कवि जमू सहूलियात ती 24 घंटे सर्विस लेबर रूम अल्ट्रासाउंड इको ईसीजी पेशेंट मेडिकल वार्ड जनरेटर और नो टू जरूरी सहूलियात मौजूद थी नो पतयात साथे और तशरीफ रावड़े टोपी मेडिकल केयर सेंटर अयास प्लाजा जड़ा में लेलार टोपी मोबाइल नंबर दे 0335-666-2878 द्वैम नंबर दे 0336-444-5878
4: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na umid shuvi bimarano da para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranish tashwida. Katasu ki hum

0: मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल अफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा दुआ से। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अलीता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हो कुचरता ददग ज्वानको पवखबान उनकलेशी न प रारवान वख की दग ज्वान की सासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयल स्किन औ द दानो द पारा हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बानी द सलूर

ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं। ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

नहीं होना, ठीक है ना, समझ जाइएगा। बीच में अगर जो है ना मेरी आवाज ब्रेक हो जाती है, डायरेक्ट बैक टू बैक म्यूजिक चल जाता है, तो ये आप लोगों के माइंड में पॉइंट होना चाहिए कि ताहिर के पास, ताहिर के स्टूडियो में लाइट चली गई है भाई, क्योंकि बैकअप तो है जो है ना मेरे पास है नहीं है। बैकअप बराबर करते हैं जी, मतलब ये कि बैटरीज वगैरह लेनी है, लेकिन अभी इतना कोई बजट नहीं है मेरा कि मैं अपने मतलब अपना जो मेरा होम स्टूडियो है उसको मैं अपग्रेड कर पाऊँ या मतलब जो है ना उसकी अपग्रेडेशन करूँ।

ओके वेल वंस अगेन एक मरतबा फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ जी ताहिर जमान आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के संग संग। अच्छा मेरी पूरी पूरी कोशिश ये होगी कि आज का ये प्रोग्राम जो है ना पूरा टोटली मतलब ये कि उर्दू में प्रेजेंट किया जाए। उसकी मेन रीजन या मेन वजह यही है कि भाई हमारे मतलब उर्दू स्पीकर या फिर उर्दू स्पीकिंग जो हैं वो इस बात पे बहुत ज्यादा गिल्ला करते हैं या गिल्ले करते हैं कि ताहिर आप सारे के सारा प्रोग्राम पश्तो में प्रेजेंट कर लेते हैं तो हम लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि मेरी आवाज़ सिर्फ सवाबी में नहीं सुनी जा रही बल्कि और भी डिफरेंट सिटीज में सुनी जा रही है। जैसे लाइक मेरी आवाज पहुंच रही जनाब इस वक्त हजरों में, हजरों के साथ साथ मेरी आवाज गाजी में सुनी जा रही है, अटक डिस्ट्रिक्ट में मतलब अटक सिटी में, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हरिपुर, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, डिस्ट्रिक्ट वेस्तान, तुरगर और इसी के साथ साथ साइड सर्कल एरियाज जितने भी हैं लाइक मरी तक मेरी आवाज सुनी जाती है। इस साइड पे अगर मैं बात करूं तो मेरी आवाज सुनी जाती है जनाब नौशहरा में सुनी जाती है, चारसदा में सुनी जाती है, इसी के साथ साथ मोमंद में, प्रांग में मेरी आवाज सुनी जाती है। साथ साथ अगर बात की जाए तो बटखेला वाली साइड पे, तखबाई वाली साइड पे, मरदान वाली साइड पे और मलकंड दरगाह साइड पे, साथ साथ आवाज को जनाब काफी और भी दूर दूर तक सुना जाता है। कुहाट साइड पे भी मेरी आवाज सुनी जाती है, दरा साइड पे सुनी जाती है, साथ ही साथ फीडबैक कीजिएगा जी ट्रांसमिशन के हवाले से भी। अच्छा मैं सवाबी के मौसम के हवाले से बात कर रहा था क्योंकि जनाब हम इस वक्त लोकेलिटी जो है ना वो सवाबी से ही है, हमारी जो आवाज ब्रॉडकास्ट हो रही है वो सवाबी से ही मतलब जो है ना ब्रॉडकास्ट हो रही है। अगर सवाबी के मौसम की बात की जाए ना जनाब तो इस वक्त मौसम ने वाकई जो है ना दिल जीत लिया है। हल्की हल्की बारिश, बादलों की नरम नरम गूंज, ठंडी ठंडी हवा और रात की खामोशी। वह जनाब ऐसे मौसम में अगर कोई नरम सी आवाज, कोई अपना सा लहजा और दिल के करीब मतलब जो है ना कोई मौजूद हो तो इंसान वाकई जो है ना दुनिया भूल जाता है। और बारिश के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बारिश वैसे भी जो है ना अच्छी लगती है। किसे अच्छी लगती है यार? मुझे अच्छी लगती है, आप लोगों को पता नहीं जो है ना अच्छी लगती होगी या नहीं। बारिश वैसे भी जो है ना सिर्फ पानी नहीं होती जनाब, बारिश एहसास होती है, बारिश याद होती है, बारिश मोहब्बत होती है। किसी की याद बनकर बरसती है, कभी किसी की कमी बनकर बरसती है और कभी दिल के अंदर जो है छुपी उदासियों को ऐसे ऐसे बाहर निकाल लेती है। और ये जो बादल गरज रहे हैं ना जनाब, ऐसा लगता है जैसे आसमान भी मतलब जो है ना कोई कहानी सुना रहा हो, जैसे बादलों के अंदर भी जो है ना कहीं ना कहीं कोई दर्द छुपा हो। क्योंकि बाज मौसम सिर्फ मौसम नहीं होते, वो इंसान के दिल की कैफियत बन जाते हैं। कुछ लोग बारिश में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, खिड़की के पास बैठ जाते हैं, चाय का कप हाथ में ले लेते हैं और खामोशी से बारिश को महसूस करते हैं। और कुछ लोग जो है ना ऐसे भी होते हैं जो बारिश में और ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि बारिश पुरानी यादों को जगा देती है। हंसी याद आ जाती है, किसी के साथ भीगे हुए लम्हे याद आ जाते हैं। और अगर मैं सच बात कहूँ तो बारिश में मोहब्बत और भी जो है ना खूबसूरत लगती है क्योंकि बारिश इंसान को नर्म बना देती है, दिल के अंदर जो है छुपी हुई बातें जगने लगती हैं और फिर इंसान किसी अपने को बहुत ज्यादा याद करने लगता है। कभी किसी के साथ बारिश में चलने का दिल करता है इंसान का, कभी किसी की आवाज सुनने का दिल करता है, जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं इस वक्त, हाय। कभी किसी के कंधे पर मतलब जो है सर रखकर खामोश रहना अच्छा लगता है क्योंकि बाज एहसास अल्फाज से मतलब जो है ना नहीं बल्कि खामोशियों से महसूस किए जाते हैं जी। और जनाब सवाबी की ये हल्की हल्की बारिश, ये ठंडी हवा, ये रात की खामोशी और ऊपर से रेडियो दिलबर एफएम 94 सवाबी या एफएम 94 सवाबी की ये नर्म आवाज वाकई आज की रात को जो है ना यादगार बना रही है। और कुछ लोग शायद इस वक्त अपनी छतों पर बैठे होंगे, कुछ खिड़कियों के पास बारिश देख रहे होंगे, कुछ बिस्तर में मतलब जो है ना ये कि मतलब मेरे कहने का ये है कि चारपाई में बैठे हुए हेडफोन लगाकर इस आवाज को महसूस कर रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी एक इंसान को बहुत ज्यादा याद कर रहे होंगे क्योंकि बारिश में यादें भीगने लगती हैं ना, और इंसान वो सब महसूस करने लगते हैं जिसे वो दिन भर छुपाता रहता है। कभी ना कभी इंसान बारिश को देखते हुए सिर्फ चीज मांगता है या मतलब जो है ना एक चीज चाहता है, उनके दिल में आती है ना,
کہ کوئی اپنا پاس بیٹھا ہو, کوئی ایسا جو خاموشی کو بھی مطلب نشانہ یہ کہ سمجھ لے, جو بنا بولے بھی دل کی کیفیت کو محسوس کر لے, دل کی فیلنگز کو پڑھ لے. اور محبت بھی شاید یہی ہوتی ہے جناب, کسی کے ساتھ خاموش مطلب لمحات بٹائے جائیں, یا مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ خاموش بیٹھ کر بھی سکون محسوس ہونا, کسی کے ساتھ بارش دیکھتے ہوئے مطلب یہ کہ سوری معذرت, کسی کے ساتھ بارش دیکھتے ہوئے وقت بھول جانا, کسی کی موجودگی میں دل کا مطمئن ہو جانا, دل کو مطلب جو ہے نا ایک اطمینان مل جانا. اور یہ جو بارش کی بوندیں ہوتی ہیں نا, یہ صرف زمین پر نہیں گرتی, یہ انسان کے دل پر بھی گرتی ہیں. کچھ بوندیں خوشی کی مطلب جو ہے نا ہوتی ہیں, خوشی بن کر گرتی ہیں, اور کچھ بوندیں آنکھوں کی مطلب جو ہے نا نمی کی طرح ہوتی ہیں, کچھ بوندیں آنکھوں تک مطلب جو ہے نا آ جاتی ہیں. وہ جناب آج کی یہ رات, سوابی کا یہ موسم, بادلوں کی یہ آواز, بارش کی یہ خوشبو, اور آپ لوگوں کی یہ محبت واقعی جو ہے نا دل کو ایک عجیب سا سکون دے رہی ہے. تو جناب اگر آپ اس وقت بارش محسوس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میری آواز سن رہے ہیں تو اسے محسوس کیجیے گا, اور ساتھ ساتھ اگر چائے ہو جائے نا وہ بھی گڑ والی,

ओके स्वीट लिसनर्स, एक मरतो फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। ताहिर जमाना आप लोगों को वेलकम कहता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM 94 और रेडियो दिलबर FM 94 से। और जनाब सिर्फ हमारे रेडियो का नाम ही दिलबर नहीं है, बल्कि जो है ना आप लोग भी

दिलबर हैं, क्योंकि दिलबर जो है ना दिलबर, क्योंकि दिलबर सिर्फ जो है ना उसे नहीं कहते जो खूबसूरत हो, दिलबर उसे कहते हैं जो दिल के करीब हो, जो इंसान के एहसास में रहता हो, जो खामोशी में भी याद आए, जो बारिश में भी मतलब जो है ना याद आए, जो रात की तन्हाई में भी मतलब जो है ना याद आए। दिलबर वो होता है जनाब जिसकी आवाज सुनकर जो है ना दिल को सुकून मिल जाए, और मैं भी आप लोगों का मतलब जो है ना दिलबर ही हूँ, ठीक है ना। मेरी इस बात को पता नहीं जो है ना आप किस एंगल से ले रहे होंगे और किस एंगल से मतलब जो है ना फील कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। अच्छा, दिलबर वो होता है जिसके लहजे में अपनाइत हो, जिसकी बातों में मोहब्बत हो, और जिसकी मौजूदगी इंसान के अंदर जो है ना अंदर के शोर को खामोश कर दे। कभी कभी ना इंसान हजारों लोगों के दरमियान होता है, मगर दिल सिर्फ जो है ना एक इंसान को ढूंढ रहा होता है, वही इंसान फिर दिलबर बन जाता है, जिसकी बातों में सुकून हो, जिसकी खामोशी में भी एहसास हो, और जिसकी याद बारिश की बूंदों की तरह आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता दिल पर गिरती हो। और यहाँ ये बात भी मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के, और आज सवाबी का मौसम भी वाकई जो है ना दिलबर बना हुआ है। हल्की हल्की बारिश, ठंडी ठंडी हवा, बादलों की नरम नरम ये गरज चमक, और ऊपर से रेडियो दिलबर FM 94 स्वाबी की ये प्यारी आवाज, और माइक्रोफोन के इस जानेब आप लोगों का साथ दे रहे आप लोगों का मेजबान ताहिर जमान। वह ऐसे मौसम में मोहब्बत ना हो तो फिर कब हो, हाय हाय। अच्छा, वैसे बारिश वैसे भी दिलबर लोगों का मौसम होता है ना, क्योंकि बारिश में इंसान को सबसे ज्यादा जो है ना किसी अपने की याद आती है। कभी दिल चाहता है कि कोई साथ बैठा हो, कोई खामोशी से बारिश देख रहा हो, कोई चाय का कप जो है ना हाथ में पकड़कर सिर्फ ये कह रहा हो कि ऐसे मौसम में तुम बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, बहुत बहुत मतलब जो है ना खूबसूरत लगते हो, और तुम्हारी क्या कहने, तुम्हारी मुस्कुराहट खूबसूरत है।

0: इंतजार में।
1: अच्छा जी, इसने है कि आप लोगों के काफी सारे मैसेजेस आए हुए हैं, इनको साथ साथ ऐड करते हैं, एंटरटेन करते हैं, देन फिर मैं जो है ना आप लोगों को एक मौजू भी बताऊंगा, टॉपिक भी बताऊंगा, उस टॉपिक पे गुफ्तगू करते हैं। अगर कोई शामिल होना चाहता है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाना चाहता है, बताना चाहता है मुझे कि वो मेरे साथ है, ताहिर जमान के साथ है, FM 94 रेडियो दिलबर सो अभी सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आवाज ओके दे जी, मनाना शुक्रिया, डेरा मनाना चिता उस्ताद जमा, आवाज ओके दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसमा मुंगसरा गदुन ना प्रोग्राम शामिल शुआ हुई छे, प्रोग्राम मौसम जबरदस्त है जी, ठूल और दुन कुता जमा साइड अस्सलाम ना। वालेकुम अस्सलाम जी, सलाम भैया। वालेकुम अस्सलाम संगीता सफी टिक टाक की, निमल मुंगसरा प्रोग्राम के शामिल शुआ, सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हां रानी मुंगसरा प्रोग्राम के शामिल शुआ, सोबे ना हुई छे आयजा सिंह अदा आयजा, बस वक्ती रास जगम ने नो दरस गोबल लगस्ते हो ओ दके देना मामिल उदेश गिनिज कमन दा प्रोग्राम, बस कदा ना उदा केदे कना देव मा प्रोग्राम नको जके ची दी लक चगी सूरज कमन दुम रदी ची आ बिल्कुल कार तना पिरग दीजे। मौसम खखुले दे जी और आवाज हम कमन उस्ता सखुले दे, मनाना शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयजा कैसी है? ठीक है, खैरियत से है। और ये है कि ये किसका मैसेज आया जी? अच्छा भैया, आपका इंतजार रहता है हफ्ता भर भाई, बहुत प्यारा मौसम है और बारिश हो रही है और मैं छत पे साथ में टहल भी रही हूँ और साथ साथ आपका प्रोग्राम भी सुन रही हूँ। टोपी से हमारा साथ दे रही है जी राबेल, तेरे यादों में। बहुत बहुत शुक्रिया टोपी से हमारा साथ देने के लिए जी। सलाम सर। वालेकुम सलाम। नाजो एम हसीबा तंजीला अजरा आओ डेर डेर सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। डेर मनाना सलाम खगा सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। एंड बुशरा फ्रॉम सवाबी, सवाबी से हमारे साथ दे रही है बुशरा। तो एक बार फिर दिल को तोड़ मेरे, तुझ पे थोड़ा एतबार बाकी है। मी बुशरा फ्रॉम सवाबी। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा। एंड बुशरा के अलावा नेक्स्ट हमारे साथ कौन दे रहे हैं? कहाँ से भैया? सासो प्रेजेंटेशन, सासो खबर, सासो अंदाज, सासो लहजा जी गमदनों से मफ को ले रहा मन नहीं। शुक्रिया सम इंतजार मो सही। अच्छा आप कह रहे हैं कि नहीं, आप कह रही हैं कि इंतजार हमने काफी सर किया है और यहाँ ये भी लिखते हैं कि ब्रो वेयर इज माय फेवरेट टपे, ब्रो आई एम ऑलवेज विद यू। भाई आपको बारिश अच्छी लगती है या नहीं लगती है? ये चार सदस्य हमारे साथ दे रही है शगुफ्ता। बहुत बहुत शुक्रिया शगुफ्ता। शगुफ्ता बारिश किसे अच्छी नहीं लगती, हर बंदे को अच्छी लगती है जो कि जिसके अंदर जो है ना मोहब्बत का कोई जरा बराबर भी मतलब जो है ना कोई जरा मौजूद होता है तो उसे बारिश अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया सिंह। ये तस्वीर ठीक ठाक ये मेहरान यम सोर दोनों खारना ताहिर भाई आपके साथ आपका भाई था शायद उस टाइम जिसका नाम खालिद जमान था। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बस करें पुरानी बातें जो है ना आपने याद दिलवा दी हैं। आयशा अली हमारे साथ दे रही है अंबार से। बहुत बहुत शुक्रिया जी अंबार से हमारे साथ देने के लिए। आरजे अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। आपकी आवाज जो है ना मेरी जान है, ये पता नहीं कि हाय जमा दिलबर वो बस ते न मने मना ना जी। शुक्रिया अरिबज गमदन मुक्त मैसेज के देर मनना। सलाम भाई। वालेकुम असलाम सिंह जी तस्खी ठीक ठाक ये भाई पठानों वाला उर्दू बोलो जुल्फे दिमारान दे दा ट्रैक हम कमन प्रोग्राम के शामिल करी थी, कोशिश बखू तो सुपर दा ट्रैक प्रोग्राम के एंटेन को शामिल को। आ ویل جناب یو سو میسجز په واتس اپ هم راغلی دا میسج نو هم پروگرام کې شاملول غواړي او یو وعده چې کوم نن پروگرام کې شاملو و دغه نمبر تاسو لپاره آن ایئر کوم جی تاسو په واتس اپ میسجز کول غواړي نو تاسو واتس اپ باندې هم راتلی شئ شاملې دی شئ او که څوک دیس ایج کوم دنو میسجز کول غواړي نو دیس ایم میسجونه کول شئ تاسو صحیح دی کنه 0334-440-0976 0334-440-0976 یو یو نمبر تاسو پر کوم دن آن ایئر کوم 0334-44-00976 0334 مطلب یو زلی صفر او دو زلی دری او بیا سلور زلی سلور بیا دو زلی جگم دینو صفران بیا 976

अच्छा जी, आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। क्या इंसान किसी की आदत से मोहब्बत करता है या मोहब्बत की वजह से आदत बन जाती है? जनाब, ये मौजू सिर्फ जो है ना एक सवाल नहीं है, हजारों दिलों की कहानी है, क्योंकि कभी कभी इंसान किसी को पसंद करते करते उसका आदि हो जाता है और फिर यूं होते लिसन्स के, और कभी किसी की आदत इतनी गहरी हो जाती है कि

अच्छा तो मैं क्या बात कर रहा था जनाब, मैं यहाँ ये बात कर रहा था कि ये मौजू इस तरह का मौजू है ना कि ये मौजू सिर्फ एक सवाल नहीं है, हजारों दिलों की कहानी है। क्योंकि कभी कभी इंसान किसी को पसंद करते करते उसका आदी हो जाता है, और कभी किसी की आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वही आदत मोहब्बत लगने लगती है। पहले सिर्फ जो है ना बातें अच्छी लगती हैं, फिर इंतजार होने लगता है, फिर उस इंसान के बगैर जो है ना दिल अधूरा लगने लगता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि दिल हर वक्त जो है ना उसी इंसान को महसूस करता है।

अच्छा जनाब, तो क्या मैं बात कर रहा था जनाब, बाज मौजू सिर्फ जो है ना मौजू नहीं होते, वो इंसान के दिल के अंदर की छुपी हुई कैफियत होते हैं। और आज का ये मौजू भी कुछ ऐसा ही है, क्या इंसान किसी की आदत से मोहब्बत करता है या मोहब्बत की वजह से आदत बन जाती है। कभी कभी इंसान किसी से सिर्फ बात करना शुरू करता है, ना कोई इरादा ना कोई वादा, बस एक सलाम, एक गुफ्तगू, एक नरम सा लहजा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान दिल के करीब आने लगता है। फिर उसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं, उसकी हंसी सुकून देने लगती है और उसकी मौजूदगी दिल को मुकम्मल लगने लगती है ना। लेकिन जनाब मैं यहाँ ये बात करना चाहूंगा कि हर आदत मोहब्बत नहीं होती, बाद लोग सिर्फ वक्त गुजारने के लिए करीब आते हैं और बाज इंसान की रूह तक उतर जाते हैं। फर्क सिर्फ एहसास को होता है। और अगर किसी की मौजूदगी आपको सुकून दे, अगर उसकी आवाज सुनकर दिल नर्म हो जाए, उसकी उदासी आपको बेचैन कर दे, तो समझ लीजिएगा कि वो सिर्फ जो है आदत नहीं है बल्कि वो मोहब्बत बन चुकी है। और सच कहूं मैं लिसनर्स, तो यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा कि मोहब्बत की सबसे खतरनाक शक्ल वो होती है जब इंसान किसी की आदत बन जाए, क्योंकि मोहब्बत शायद जो है ना खत्म हो जाए मगर आदत आसानी से खत्म नहीं होती जी। फिर इंसान हर जगह उसी को महसूस करता है। कभी कभी इंसान किसी से इतना अटैच हो जाता है कि उसके बगैर खुद को खाली खाली महसूस करने लगता है ना। लोगों में बैठा होता है मगर दिल कहीं जो है ना और होता है, हंसता भी है मगर अंदर से कहीं जो है ना उदास होता है।

मेरी तरह बोलते बोलते जो है आप बीच में बात भूल जाते हैं, ये क्यों होता है इस बारे में प्लीज थोड़ा सा बताएं। एफ खान हमारे साथ दे रही है, फरियाल खान ना भाई, आदत की वजह से मोहब्बत हो जाती है। राबेल हमारे साथ दे रही है टोपी से, बहुत बहुत शुक्रिया राबेल अगेन से हमारे साथ देने के लिए।

हमें तो उस शख्स से मोहब्बत हो गई थी और अब जरूरत और आदत बन चुका है। मेला तो नहीं है लेकिन याद हमेशा साथ रहेगी। पहले सिर्फ जाना समझ नहीं आ रही भाई, ये आपने लिखा गया हुआ है। आयशा अली खान हमारे साथ दे रही अंबार से। ताहिर भैया जमा सरा डेरा गटा धोखा शविदा या खुदा पाका। लेकिन याद हमेशा साथ रहेगी। पहले सिर्फ जाना समझ नहीं आ रही भाई, ये आपने लिखा गया हुआ है। आयशा अली खान हमारे साथ दे रही अंबार से। ताहिर भैया जमा सरा डेरा गटा धोखा शविदा या खुदा पाका।

0: नहीं सजना, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में एक खूबसूरत सा ट्रैक है। इस ट्रैक के साथ हम बात करते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज, हमारे पाकिस्तानी सिंगर। आई होप कि आप लोगों को ये ट्रैक अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे आप।
1: प्लीज़।

ओके स्वीट लिसनर्स, मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ कि दर्द और खामोशी दो ऐसे रिश्ते हैं जो अक्सर साथ साथ चलते हैं। दर्द और खामोशी दो ऐसे रिश्ते हैं जो अक्सर साथ साथ चलते हैं। दर्द बोलता नहीं और खामोशी सुनाती नहीं, मगर दोनों मिलकर इंसान के अंदर एक पूरी कहानी लिख देते हैं। कभी इंसान हंसता है, लोगों के दरमियान होता है, सब ठीक लग रहा होता है, एक खामोश सी जंग चल रही होती है, ऐसी जंग जिसमें ना कोई आवाज होती है ना कोई हेल्प होती है, एक मदद होती है, सिर्फ एहसास होते हैं। और सच में अगर कहूं तो खामोशी हमेशा सुकून नहीं होती, कभी ये वो दर्द होती है जिसे इंसान लफ्ज नहीं दे पाता, वो सब कुछ कहना चाहता है मगर कह नहीं पाता और फिर खुद ही खामोश हो जाता है। क्योंकि लिसनर्स, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो चीख कर नहीं दिखाए जाते, बस अंदर ही अंदर इंसान को बदल देते हैं और फिर इंसान बाहर से मजबूत नजर आता है मगर अंदर से कहीं टूटा होता है। दर्द एक अजीब हकीकत है और दर्द की मतलब ये भी एक हकीकत है कि जिस चीज से इंसान को दर्द मिलता है वही इंसान बार बार करता है। क्यों? क्योंकि दिल अकल से नहीं चलता, दिल यादों से चलता है और एहसास से चलता है और कभी कभी उम्मीद से भी चलता है। कभी कोई इंसान हमें तकलीफ देता है फिर भी हम उसी के इंतजार में रहते हैं, कभी कोई हमें तोड़ देता है फिर भी हम उसी को जोड़ने की कोशिश करते हैं, यही तो इंसान का कमाल है। इंसान का कमाल है और कमजोरी भी है लिसंस के, वो दर्द देने वालों को भी दिल के करीब रखता है और खामोशी यहां और गहरी होती चली जाती है। न शिकवा न सवाल, बस एक अंदर का खालीपन, एक अधूरा एहसास। कभी इंसान खुद से पूछता है कि मैं बार बार वही जगह क्यों जा रहा हूं, उसी जगह बार बार क्यों जा रहा हूं जहां मुझे तकलीफ मिली, और जवाब खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं होता। आंसर, जवाब खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं होता। तो स्वीट लिसनर्स, दर्द और खामोशी दो ऐसे साथी हैं जो इंसान को बताते नहीं हैं मगर बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। आप मैसेजेस कर सकते हैं अपने दिल का हाल अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आना चाहते हैं तो जरूर आइएगा, जरूर शामिल होइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप आएंगे। 0334-440-0976 0334-440-0976

काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, दू बड़े प्यार से, चाहो से, बड़े मान के साथ। तो बड़े प्यार से, बड़े चाहो से, बड़े मान के साथ अपनी नाजक सी कलाई में चढ़ाती मुझको और बेताबी से फरक्त के खजान लम्हों में। और बेताबी से फरकत के खजान लम्हों में तो किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सजाता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होंठों की हिद्दत से मैं दहक सजाता, रात को जब भी तू बन कुबा खोलने लगती जाना, रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरे हाथ का एक तकिया बनाया करती, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरे जुल्फों को, तेरे गालों को चूमा करता, जब भी तू बन कुबा खोलने लगती जाना, मैं अपनी आंखों को तेरे हुस्न से खैरा करता, मुझको बेताब सरकता तेरी चाहत का नशा, मुझको बेताब सरकता तेरी चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता, कुछ नहीं तो यही बेनाम से बंधन होता, ऐ काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता।

ओके जी, एक मिनट दो, फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, ये है कि हमारी आवाज थोड़े टाइम के लिए बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुई थी। मेन रीजन ये है कि बाजू का जो है ना, ये मतलब दोनों साइड से कनेक्शन होता है। एक साइड पे अपलोडिंग हो रही होती है और दूसरे साइड पे डाउनलोडिंग हो रही होती है। क्योंकि मेरे हैंड पे ये अपलोडिंग, दूसरे हैंड पे जो मतलब जहां पे रेडियो का ट्रांसमीटर पड़ा हुआ है, जहां पे एंटीना लगा हुआ है या जहां से आवाज ब्रॉडकास्ट हो रही है, उस हैंड से डाउनलोडिंग हो रही है। तो बीच में अगर एक साइड पे मसला आ जाए, मतलब मींस कि अपलोडिंग साइड या डाउनलोडिंग साइड पे, एक साइड पे किसी एक जगह पे मतलब जो है ना कोई हल्का सा मसला आ जाए, तो आवाज में ब्रेक आ जाता है, आवाज थोड़ी सी कट जाती है। खैर जनाब, दोबारा से हमारा लिंक ओपन हो चुका है और ये कि हम आप लोगों के साथ लिंक हो चुके हैं FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी से। सो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाएं जी, आखिरी लम्हात हैं, आखिरी लम्हात में कुछ कहना चाहते हैं, कोई दिल की बात हमारे साथ मतलब जो है ना शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास ये कि ये दिलवाना चाहते हैं कि हाँ भाई, हम भी मौजूद हैं, हम भी आपकी आवाज सुन रहे हैं, या आपके साथ ताहिर अभी तक इस पहर तक जो है ना साथ साथ हैं, तो जरूर बता सकते हैं। 0334 440 0976, 0334 44 00976, 0334 440 0976, 0334 44 00। अच्छा लिसनर्स, तो मैं क्या बात कर रहा था कि सवाल से बात चल रही थी, बात करते हैं जी, खामोशी के हवाले से बात हो रही थी और आपके मैसेजेस

स्वीट लिसनर्स, कुछ कहना चाहता हूं यहां पे। कि एफएम स्टेशन पे, मतलब रेडियो स्टेशन पे काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। जनाब यादें इसलिए अलविदा नहीं होती क्योंकि यादें चीजें नहीं होती, वो एहसास होती हैं और एहसास को खत्म नहीं किया जा सकता, इसे दबाया छुपाया मगर मिटाया भी नहीं जा सकता। कभी इंसान समझता है कि वो सब कुछ भूल गया है मगर किसी रात की खामोशी में, किसी पुराने गाने में या किसी अचानक ख्याल में वही यादें वापस आ जाती हैं, क्योंकि यादें दिल के अंदर लिखी होती हैं, दीवारों पर नहीं। और सच कहें जनाब तो यादें इसलिए भी नहीं जाती, सिर्फ जो है ना माजी नहीं होती, वो हमें मतलब एक एहसास देती हैं, वो हमारे एहसास का हिस्सा बन जाती हैं। जो लोग दिल के करीब होते हैं ना होती हैं, वो हमारे एहसास के हिस्सा बन जाती हैं। जो लोग दिल के करीब होते हैं उनके साथ जुड़े लम्हे भी दिल में रह जाते हैं। कभी याद आती है, कभी किसी की बातें याद आती हैं, किसी का इंतजार याद आता है, किसी का अंदाज याद आ जाता है। और यही तो यादों की हकीकत है जनाब, कि ये इजाजत नहीं लेती, बस आ जाती हैं और इंसान सिर्फ इन्हें महसूस कर सकता है। रोक नहीं सकता। और जहां तक बात अलविदा की है, तो अगर कभी जिंदगी ने हमें दोबारा इसी मुकाम पर मिलाया तो फिर, क्योंकि बाज रिश्ते खत्म नहीं होते, बाज वक्फे लेते हैं, साइलेंस लेते हैं, थोड़ा सा वक्फा लेते हैं। और सच कहें तो रेडियो पर हजारों आवाजें होती हैं मगर असल बात आवाज की नहीं होती, असल बात एहसास की होती है। और आप सुनने वाले बहुत ही कमाल के लोग हैं, बड़े आला ज़र्फ लोग हैं। स्वीट लिसनर्स, मेरी कोशिश भी यही है कि आप तक एहसास पहुंचे, क्योंकि जनाब जब एक आरजे दिल से बोलता है तो सुनने वाला सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि महसूस करता है। तो अगर मेरी कोई बात आपके दिल तक पहुंची हो तो ये सिर्फ जाना प्रोग्राम नहीं था, ये एक एहसास था, एहसास का सफर था। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में, ताहिर जमान की दुआओं में हमेशा शामिल रहेंगे। और अगर इन बेवफा सांसों ने वफा की तो फिर मिलेंगे सेम चैनल सेम पैनल फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी से। प्रोग्राम के बाद अगर आप मुझे रिस्पांस करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं प्रोग्राम के हवाले से, तो दे सकते हैं 0334-440-0976 पे। ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप शामिल रहेंगे। तल्दी पाकिस्तान, यानी कि हमेशा रहे पाकिस्तान। द अल्लाह पमान एंड लव यू ऑल। बाय बाय।